जोसुलपा थौ नेपाल सम्ब झिन्छसो पी खुद गुङला थो त्रयोदशी थो रेडियो नेपाल ख अन्य नादिस झिरुबी पाखे नेपाल भाषा या समाचार। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह थौ प्रतिनिधि सभा बैठके सांसदे घुनियाशैलिस बिगु ज्याजो दु संघीय संसद सचिवालय कथौ थौ हिने छता इलेचुनीगु बैठके सांसद न्यङ्गु न्यासया लिस प्रधानमन्त्री शाह बिगु ज्यादल दुगु ख प्रधानमन्त्री शाह थौ जुइगु न्यास झिन्छमा सांसद न्यासया लिस बिया दिगु ज्याजो दु प्रतिपक्षी दल या झिन्छमा सांसद प्रधानमन्त्री या त नेनेगु न्यास त संसद सचिवालय खे लल या धुङ्के लल्या धुङ्क गुदु वेक पिन्छ ग्यासा सुकुम्बासी तेगु हाठ्या ठिके जुया चोङगु बचाभा भ्रष्टाचार निसे सीमा हाठ्या विशेष न्यास देखा दिगुदु प्रधानमन्त्री नापाया न्यास लिस झिङ्यागु तक्क न्यास दर्ता यायगु व्यवस्था दुसा कोटा कथन दल तेगु थास संसद तेस न्यास तैगु व्यवस्था यागु दु नेगु न्यास दर्ता या दैगु कोटा दुगु सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाया सोमा संसद तेस जक्क न्यास दर्ता याक गुदु मेगु दल या थासा धासा कोटा कथ न्यास दर्ता जुगुदु सभामुख डोल प्रसाद अर्याल न्यास या लिस या विशेष यी तोके याना दिसे भदौ पाँच गते दुने न्यास दर्ता या त संसदे त उजमा ब्यादिगु ख संसद सचिवालय कथ रासोपास अमरेश कुमार सिंह कृष्ण हरिबुढाथोकी समीक्षा बासकोटा न्यास दर्ता या दिगुदु छ अथेना मेगु दल त पाखे सांसद नेपाली कङ्ग्रेससँग बासना थापा गीता गुरुङ न्यास दर्तायाका दिगुदु अथ्याना नेकपा एमाले थासा एन बहादुर महर व गणेश सिंह ठकुना न्यास दर्तायाका दिगुदु नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाया वर्षमान पुन उपमेश हमालन न्यास दर्तायाका दिगुदु श्रम संस्कृति पार्टी हर्करास राई व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी खुसबु ओलिन न्यास दर्तायाका दिगुदु सभामुख या रुलिङ कथ संसद सचिवालय दलीय कोटा नापा रासोपास नेगु व कङ्ग्रेस एमाले नेकपा निगु निगु न्यास बोटी कथ फ्यागु दुसा जानकारी कथ दल त्यता यक थो जानकारी दल त्यता नापाए यके धुङ्कगु ख श्रम संस्कृति हो रापर पाँच छगु छगु न्यास दर्ता यक गु दु थौया बैठके प्रधानमन्त्री सह मुस्लिम आयोग नेक गु दमुजाया प्रतिवेदन आर्थिक धन 2081-82 निभया दिगु ज्यादलन दु अतियाना ऊर्जा जलस्रोत व सिंचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ नेपाल व भारतदती दीर्घकालीन विद्युत व्यापार नापाया सम्झौता निभया दिगु ज्याजो दुस अथियाना थौ विधान व्यवस्थापन समिति व सार्वजनिक नीति व प्रत्यायोजित विधान समिति अब बैठक न चोनिगु गोसा दु राष्ट्रिय सभासा नेपाल विशेष सेवा एन 2042 या साविका व्यवस्था माकिगु नापाया विधेयक 2083 या दफा वर्ष अलया नीति विधान व्यवस्थापन समिति छेमाथेगु प्रस्ताव सर्वसम्मति स्वीकृति अगुदु राष्ट्रिय सभा मिगया बैठक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह यथासँग कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सुविता गौतम न्यवयादिगु प्रतिनिधि सभासँग हसना नापा वोगु विधेयक तथा दफा वर्ष अलया नीति विधान व्यवस्थापन समिति छेमाथेगु प्रस्ताव स्वीकृत जुगु ख अध्ययना बैठक सुनिले सांसद नैतिक व यौन शिक्षा मिसा सुरक्षा यौनजन्य हिंसा न्यूनीकरण नापाया विशेष गम्भीर जुया जुइत सरकारी ध्यान कोसला दिगु खस सांसद पिसा सोधोदुमा ह्याउ मचा दति जुगु यौनजन्य अपराध व हत्याया झाँका खे लावामा सीता कानुन कथन कारवाही या त माग्या नदिगुदु अथियाना सांसद पिसा प्रादेशिक अस्पताल चिकित्सकीय म व लापरवाही हुने मचा विकिपी मिसा तेगु स्वास्थ्य जोखिमे लागु बाजुरा नापाया ग्रामीण जिल्ला तेके चिकित्सकको स्वास्थ्य सेवा या पहुँच तब्याके माग उदासन सरकारी अध्ययन कोसला दिगुदु राष्ट्रिय सभा मेगु बैठक भदौ 16 गते मङ्गलबार निनेसिया छताइ जुया झिङ्यागु मिनेटे चोनिगु गोसादु नेपाली कङ्ग्रेस या न्यानाचोङ्गु कचौ नङ्केगु झोले सर्वोच्च अदालत या विचाराधीन दुगु अवस्था दुगु झिङ्गाकगु महाधिवेशन दिकेता माग यासे सर्वोच्च अदालत निवेदन दर्ता जुगुदु पार्टी या निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का वैगु असोचिया नितिन कोचिना तगु महाधिवेशन दिकेगु कचौ पी मभिङको तले महाधिवेशन आदेश माग्यासे निवेदन दारिया गुख सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोइराला कथ कङ्ग्रेस या देउवा समूह दारियागु निवेदने मिग पूरक निवेदन दर्ता जुगुख निवेदन दथी
कन्हैया नीति पेशी तोकियागुदु कङ्ग्रेस निर्वाचन समिति झिङ्गाका गुमा अधिवेशन वैगु अस 16 गते निसि 19 गते तक ये जुइगु ज्यादल पिथङ्गुदु। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर प्रदेश सभासँग विश्वास सहमत कयादिगुदु। प्रतिपक्षी दलीय सांसद पिसँग भोटी मकाको प्रदेश सभा बैठकले मुख्यमन्त्री थापा मगर विश्वास मत नपाए प्रस्ताव दुतव्य दिगु ख प्रस्ताव दति जुगु मतदाने वेकया पक्ष नेन हेकु मत लागु ख विपक्ष छकु मत मला। बागमती प्रदेश सभा आ सचिव पेमा दुज दयाचोङ दुसा गुकी नेपाली कङ्ग्रेस सुइखुमा नेकपा एनसिपी या थासा निखुमा नेकपा एमाले थासा निङ्यामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी या झिनीमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी सोमा वा हाम्रो नेपाली पार्टी निमा सांसद पि दु सरकार निसुनेगु नीति ङे सोमा सांसद तेगु समर्थन माली। सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा मनु तेगु सूचना अधिकार व सार्वजनिक हित यता संचार प्रणाली केन्द्र खेते मागु ध्यादिगुदु। सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था नेपाल व सामुदायिक रेडियो प्रसारक संज्ञा गोसा समिग ये न्यागु एसिया पेसिफिक इन्स्टिच्युट फर ब्रोडकास्टिङ डेभलपमेन्ट एआइबिडी या निपेकगु तमुजे यता कघाना दिस संचार मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा कृत्रिम बौद्धिकता एआई या डिजिटल प्लेटफर्म व नुगु प्रविधि यता आत्मसात सत्य तथ्य नापाया विश्वसनीय समाचार के बिगु ख वेक्ल संसार प्रविधि हुपा जुसान मनुतेको सूचना क्यादैगु अधिकार प्रेस स्वतन्त्रता व नोचु या स्वतन्त्रता नापाया आधारभूत मु मान्यता व सिद्धान्त हुपा मौईगु बिचापुङ्का दिला। सार्वजनिक सेवा प्रसारण व्यावसायिक ठेन्टे बला नापा सार्वजनिक हित या भाला नापा पुङके मागुलिन थुकिया भाला विशिष्ट दुगु संसार मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा धयादिल। एसिया प्रशान्त क्षेत्र युरोप अफ्रिका देया नापायाना मुक्क पिगु देया संसाकमी नीति निर्माता प्रमुख प्रसारण संस्था प्रतिनिधि पिनसँग भोटिकया दिगुदु। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय छ विश्वविद्यालय एन संशोधन नापा विधेयक देखे गुझोले संघीय विश्वविद्यालय उपकुलपति नापा स्वपुतैपी नापा सल व्याकगुदु। सिंह दरबार मन्त्रालय मिग जुगु सल विश्वविद्यालय एनए या मागु संशोधन विश्वविद्यालय स्वायत्तता सुशासन शैक्षिक व प्रशासनिक सुधार समसामयिक आवश्यकता कत मागु कानुन व्यवस्था भिङ्के मागु विशेषण सुझकागु ख। युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादव फुक्क कथया छे जेआईपी छे ज्यामी तेता व्यवस्थित व मर्यादित देखेको नीति मन्त्रालय कार्यविधि देखे धुङ्काको ध्यादिगुदु। उद्योग तथा वाणिज्य व श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति या मिग चोङ्गु बैठकै मन्त्री यादव श्रम एन संशोधन जुई धुङ्कानी श्रमिक नापा स्वागु फुक्क कथया हाथ्या जेनिगु ध्यादिल। वेक्ल लोक कल्याणकारी राज्य परिकल्पना यानागु जुसाना कानुनी हाठ्या हुने श्रमिक तेगु हाठ्या त संशोधन या ता थाकुया चोङ्गु समिति सन् जानकारी ब्यादिगु ख। ये या बानेश्वरी ड्युटी खेचोनासम्म प्रहरी या ता ल्हा वाइमा ल्याम या ता न्यानु कुना अनुसन्धान या ता प्रहरी अनुमति ल ल्हागुदु। आकाशे तासल न छिता इनाप यामा प्रहरी या ता ल्हा वामा जुम्ला या तातो पानी गाउँपालिका दुई छेन्दुमा आ ये महानगरीय 31 चोनाचोमा निन हेन्दुमा राज कठायत या ता न्यानु कुना अनुसन्धान या ता जिल्ला प्रशासन कार्यालय अनुमति ल लागु ख। वो विरुद्ध राष्ट्र सेवक या त पङ्ग यागु वो विरुद्ध राष्ट्र सेवा राष्ट्र सेवक या त पङ्ग यागु विरोध या मुजिगु अभद्र व्यवहार या मुजिगु कसुरे अनुसन्धान जुया चोङ्गु प्रहरिया थापुदु। कञ्चनपुरिया पश्चिमी नाका गड्डा चौकीसा नेपाल धुवाँ वैगु विदेशी पर्यटक तेगुलिया उपया सङ्गुदु। अज्ञागमन कार्यालय गड्डा चौकिया कथा लिपाङ्गु छु द थुखे नाका थो नाका जुया नेपाल धुवाँ वैपी पर्यटक तेगुलिया उपया वना सङ्गु खने दगु धागुदु। वेकया कथा वङ्गु आर्थिक दे दोची नेस निय समय विदेशी पर्यटक नेपाल धुवाँ वगु खस अथियाना छगु करोट न्यागु लाख झिन्च्या दो सचिव झिङ्गुमा झिङ्गुतका राजस्व मुङ्कगु सूचना अधिकारी नवराज भट्ट जानकारी ब्यादिल। वैकया कथ झिङ्यास सुइपेमा पर्यटक थो नाकास पिहा वङ्गुदु। इस्लाम धर्मावलम्बी लिपाङ्गु पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लाह हो रसुल या झिङ्यास व छकगु बुन्दी या लसत्या थौ थिति ज्याज गोसा गोया हना सङ्गुदु। मुस्लिम समुदाय या सन्देष्टा या कथ मोहम्मद या त हनिगु याई पैगम्बर मोहम्मद या जन्म साउदी अरबिया मक्का जुगु ख लिपा साउदी अरबिया मदिना
छया दि गुख वेक जन्म जुगु ङे सोन्दलिपा इस्लामिक पात्र हिजरी सम्बत सुरु जुगु ख आ हिजरी सम्बत झिम्पेस पी च्यादा ह्याना सङ्गुदु जगत्या सृष्टि निसे पवित्र स्थल्या कथन दुगु मक्का मदिना दक्ले न्हापा फुक्कन सिवे न्हापा धर्मालम्बी तेसा पूजा आज यही गु तीर्थस्थल खसा मोहम्मद उपदेश बिगु झोले थोए कुरान अवतरी जुगु विश्वास मुस्लिम समुदाय दथिदु सरकार अथवा मुस्लिम धर्मालम्बी ते गु नीति सार्वजनिक विधानापा बिगुदु हाइटिया राजधानी पोर्ट ओ प्रिन्सेस या दक्षिण पूर्वी लागे सशस्त्र गिरोह या हे काखे लाना मोतिन पिन हेमा मनुष्य गुदुसा निमा शिवे उपघापा जुगुदु संयुक्त राष्ट्र सङ्घ या न्हापाङ्गु धलक कथ सीमा घापा जुपिनी गुलिया उपफैगु धागुदु हाइटिया संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय एकीकृत कार्यालय या कथ हे कालिपा केन्सकोफ सुरक्षा अवस्था अझ ज्ञानपुष्य चुङ्गु धागुदु सरकार झाँका या त जघन्य आक्रमण धासे कुङखिङ्गु दुसा प्रभावित लाग्या सुरक्षा व्यवस्था सेलाकु से सरकारी नियन्त्रण हान पलिस्ता यागु प्रतिबद्धता पङ्कगुत संयुक्त राष्ट्र संज्ञा कथन सन् 2025 या सुरुवाते निला या इले केन्सकोफे जुगु गिरोह या हेका खेलाना निस वो खुइमा सिबे उपमनुषिगु खस थो आक्रमणे अथे निस छे सेङ्गु दु मिन छोगु दुस अथे सोदो सिबे उपमनु त विस्थापित जुइधुङ्कगुदु राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा सङ्कर्षण ताइल निसि सेना चोङ्गु हाइटिके लिपाङ्गु दँतेखे हिंसा तचोया चोङ्गुदु आ मौसम जानकारी थौ कोसी बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश पहाडी लगाया यक्को थासे व कर्णाली सुदूर पश्चिम प्रदेश पहाडी व तराई लगाया छुन थासे मलनापा लाप्सा तोय भतिचा तस्कौ वा वैगु सम्भावना कुबिगु दुसा कोसी बागमती प्रदेश हिमाली व पहाडी लगा व गण्डकी व लुम्बिनी प्रदेश पहाडी लगाया छगुनीगु थासे तस्कौ वा वैगु सम्भावना कुबिगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या धापुदु वङ्गु नि पे गौस ये सोनी गले नि गुगु फुटी खुगु डिग्री सेल्सियस दति क्वाज लुयाउगु खस थौ निने ये सोनी गया क्वाज नि च्यागु निसे सुइगु डिग्री सेल्सियस दति चोनीगु दुखुमा दु थौ ये सोनी गले सुते स्याङ्या त इ जुया सुइ सुङ्गु मिनेटे लुइ कगु निभा सनी ल खुताए जुया सुइ खुगु मिनेटे बि रेडियो नेपाल नेपाल भाषा या समाचार पुन चिताइले नेपाली भाषा या समाचार निना दिसा शुभ

राष्ट्रपति पड़ेल विज्ञप्ति मार्फत विपद के एहि घड़ी में उद्धार आ राहत के काज के तीव्रता देबाक लेल सरकार राजनीतिक दल सामाजिक संस्था सुरक्षा सहित संपूर्ण निकाय आम नागरिक के आह्वान कयलनि अछि। संगहि तल्लो तटीय क्षेत्रक सर्वसाधारण के सतर्क रहैत आवश्यक समन्वय एवं सहयोग में जुटबाक लेल सेहो ओ आग्रह कयलनि अछि। सरकार रसुआ जिलाक सीमा क्षेत्र रसुआ गढ़ी तथा तल्लो तटीय क्षेत्र भोटे कोसी नदी में आयल भीषण बाढ़ सँ प्रभावित नागरिकक लेल तत्काल उद्धार उपचार तथा राहतक कार्य के प्राथमिकताक संग आगू बढ़ेबाक निर्णय कयलक अछि। आजुक बैसल आकस्मिक मंत्री परिषदक बैठक में बाढ़ सँ घायल भेनिहार सबके लेल तत्काल निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारक व्यवस्था करबाक लेल तथा अवरुद्ध भेल सड़क सब पुनः संचालन के लेल आवश्यक पहल करबाक हेतु संबंधित निकाय के निर्देशन देल गेल। सरकारक प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल जानकारी दलन अहिना अवरुद्ध दूर संचार तथा विद्युत सेवा यथाशीघ्र संचालन करबाक व्यवस्था मिलबाक लेल आ क्षति भेल सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारक तत्काल पुनर्निर्माणक लेल आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालन तथा समन्वय करबाक लेल संबंधित मंत्रालय के निर्देशन देल गेल मंत्री पोखरेल बतौलनि। मंत्री पोखरेल पड़ोसी राष्ट्र सब चीन आ भारत दुनू उद्धार तथा राहतक लेल सहयोग करबाक हेतु प्रतिबद्ध रहल कहैत बाढ़िक कारण मुनिहार व्यक्ति परिवार के प्रचलित कानूनानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध करबाक निर्णय सेहो भेल जानकारी देलनि। एहि बैठक में विपद सँ प्रभावित जिला के स्थानीयता के 3 मासक लेल विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा करबाक निर्णय कयलक अछि। प्रतिनिधि सभाक सभामुख डोल प्रसाद आर्याल रसुआक भोटे कोसी में आय भिनसर आयल विनाशकारी बाढ़ सँ भेल जनधनक क्षति प्रति दुख व्यक्त करैत घायल के उद्धार तथा उपचार बेपत्ता खोजी पीड़ित तथा व्यवस्था स्थापित के राहतक लेल आवश्यक समन्वय करबाक हेतु सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा काजुक बैठक में सभामुख आर्याल विपद के समय राज्यक संपूर्ण संयंत्र उद्धार राहत आ प्रभावित नागरिक के सहयोग के प्रभावकारी बनेबा सन निर्देशन देलनि अछि। ओ विपद व्यवस्थापन में आवश्यक सहयोग समन्वय के लेल निजी क्षेत्र गैर सरकारी निकाय तथा नागरिक समाज के सेहो आह्वान कयलनि। विपद के गंभीर अवस्था के ध्यान में रखैत सभामुख आजुक कार्यसूची में रहल संपूर्ण कार्य क्रम हटाओल जानकारी करौलनि। प्रतिनिधि सभाक दोसर बैठक एहि भादव 11 गते बृहस्पति दिन दिनक 1 बजे मुंबई सात। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल भोटे कोसी नदी में गेल बाढ़ सँ रसुआ लगात नीचा तटीय क्षेत्र में भेल जनधनक क्षति प्रति दुख व्यक्त करित राहत आ उद्धार में सरकार केंद्रित रहल बतौलनि अछि। विपद के पछिला अवस्था संबंध में सरकारक दिस सँ सदन के जानकारी करबैत ओ राहत परिचालन करबाक लेल सरकार राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय रूप में समन्वय कऽ रहल बतौलनि। प्रतिनिधि सभाक आजुक बैठक में ओ रसुआ त्रिशूली सहित प्रहरी चौकी में कार्यरत 26 गोटे प्रहरी सशस्त्र प्रहरी दिशक 9 गोटे आ नेपाल सेना दिशा 44 गोटे संपर्क विहीन रहल अवस्था अछि। हुनका अनुसार रसुआ गढ़ी भंसार अध्यागमन कार्यालय सहित किछ कर्मचारी सब सेहो एखन धरि संपर्क में नहि रहल अवस्था अछि। प्रभावित क्षेत्रक किछ नागरिक सब सेहो संपर्क सँ बाहर रहल अछि। मंत्री खनालक अनुसार प्रभावित क्षेत्र में एखन 9 गोटे के लाश भेटल शनाख्त होयब बाकी अवस्था रहल ओ जानकारी देलनि। भौतिक पूर्वाधार दिस सड़क पुल जल विद्युत आ संचार क्षेत्र सहितक भारी क्षति भेल ओ जानकारी देलनि। मंत्री खनाल कहलनि पृथ्वी राजमार्गक गलछी नुआकोट रसुआक सैफरोवेसी सड़क तथा मुगलिंग नारायणगढ़ सड़क में तत्काल यात्रा नहि करबाक लेल आ नहि करा देबाक लेल संबंधित स्थानीयता प्रशासन आ सर्वसाधारण के अनुरोध कयलक अछि। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ भोटे कोसी में आयल बाढ़ सँ भेल क्षति के तत्काल विवरण संकलन का उद्धार राहत तथा पुनर्स्थापना काज के तीव्रता देबाक बात बतौलनि अछि। बाढ़िक सूचना प्राप्त भेला पर मंत्री श्रेष्ठ मंत्रालय में वरिष्ठ व्यवस्थापन समूह SMT के बैठक राखि घटनाक क्षतिक प्रारंभिक अवस्था संबंध में जानकारी लेने छलथि। ओ विपद में पड़ल कर्मचारी मजदूर तथा आम नागरिकक उद्धार तथा पुनर्स्थापना के पहिल प्राथमिकता में राखि गृह मंत्रालय सहितक निकाय सँ समन्वय कऽ प्रभावित क्षेत्र में तत्काल संयंत्र परिचालन करबाक निर्देशन देलनि। मंत्री श्रेष्ठ ऊर्जा तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार में भेल क्षति के यथार्थ विवरण संकलन का पुनर्स्थापना काज आगू बढ़ेबाक लेल निर्देशन सेहो देलनि। ओ काठमांडू पत्रिका सहित देशभर विद्युत आपूर्ति के नियमित सुरक्षित आ स्थायी बनाए रखबाक लेल आवश्यक वैकल्पिक तथा आकस्मिक व्यवस्थाक लेल तैयारी करबाक लेल संबंधित निकाय के सुझाव देलनि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण उद्धार कार्य में 7 टा सवारी साधन प्रभावित क्षेत्र पठा चुकल आ 14 टा सवारी साधन के तैयारी अवस्था में राखल जनाओल गेल अछि। बाढ़िक कारण रसुआ

जिला में संचालन में रहल 5 तथा निर्माणाधीन मिलाकर 8 जलविद्युत आयोजना प्रभावित भेल मंत्रालय जनौलक अछि। बाढ़ सँ प्रभावित चालू आयोजनाक क्षमता 236 मेगावाट आ निर्माणाधीन आयोजनाक क्षमता 342.42 मेगावाट रहल जनाओल गेल अछि। राष्ट्र स्वतंत्र पार्टीक सभापति रवि लामिछाने रसुआक भोटे कोसीमे आयल बाढ़ि सँ प्रभावित नारीके जनधनक रक्षाक लेल सरकार सम्पूर्ण सामर्थ्य लगेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। सभापति लामिछाने बैठकमे रासपाक संसदीय दलक दिससँ विशेष समय लऽ भोटे कोसीमे आयल बाढ़िक विपत्तिमे सरकार आ सभ राजनीतिक दल सङ्गे रहल बतौलनि। सभापति लामिछाने पार्टीक दिससँ आइए भिनसरेसँ प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री सहित निरन्तर छलफल, सूचना आदान प्रदान करल आ नारीक जनधन सुरक्षाक लेल राज्यक सभ संयंत्र परिचालन करबाक लेल आग्रह कयल सदन के जानकारी करौलनि। एहिसँ पहिने आजुक बैठक के शुरू में सांसद सभ रसुआक भोटे कोसी नदी में आयल बाढ़ि सँ प्रभावित के उद्धार आ राहतक लेल सबके साथ मिलक आगू बढ़बाक लेल सरकार सँ आग्रह कयने छलथि। बैठकक आकस्मिक समय में सांसद लोकनि भोटे कोसी त्रिशूली नदी किनारक बस्ती समय भारी संख्या में नागरिक सभ उद्धार राहतक प्रतीक्षा में रहल उल्लेख करैत एहि के लेल सरकारक सभ संयंत्र, स्थानीय सरकार आ नागरिक समाज एक संग परिचालित हेबाक बात बतौलनि। रसुआक भोटे कोसी में गेल बाढ़ि में पड़िकऽ 384 गोटे पर्यटक संपर्क विहीन भेल अछि। नेपाल पर्यटन बोर्ड द्वारा देल गेल जानकारी अनुसार आई भिनसर भोटे कोसी में आयल बाढ़ि में पड़िकऽ 291 विदेशी आ 93 नेपाली संपर्क विहीन भेल अछि। पर्यटन बोर्डक निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO हिकमत सिंह अयर विभिन्न कंपनी मार्फत गोसाईकुंड आ कैलाश मानसरोवर गेल 384 गोटे पर्यटक संपर्क विहीन भेल जानकारी देलनि। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रहल पर्यटक अवस्था पता लगेबाक लेल पर्यटन प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय परिचालन कयल नेपाल पर्यटन बोर्ड जनौलक अछि। नेपाल पर्यटन बोर्ड कोनो जानकारी वा सहयोग के लेल टोल फ्री नंबर 1234, हॉटलाइन नंबर 1144 आ पर्यटन प्रहरी 98512 89445 में संपर्क करबाक लेल कहलक अछि। बीरगंजक स्थानीय बाजार में चीनी के मूल अकस्मात बढ़ला पर उपभोक्ता मार में पड़ल अछि। व्यवसायिक अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रक भारतीय बाजार में एकाएक चीनीक मूल्य वृद्धि भेलाक बाद बीरगंजक स्थानीय बाजार में एकर प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में देखल गेल अछि। अहिना समाचार प्राप्त अनुसार रसुआ में आई भिनसर गेल बाढ़ि में पड़ि घायल भेल उद्धार कऽ काठमांडू आनल गेल 13 गोटे के अखन काठमांडू में विभिन्न अस्पताल में उपचार भऽ रहल अछि। जिला प्रहरी परिसर काठमांडू प्रवक्ता प्रहरी उपेक्षक दान बहादुर थापाक अनुसार उद्धार कऽ काठमांडू आनल गेल नुआकोटक विदुर नगर पालिका वार्ड नंबर 5 के 42 वर्षीय भक्त भंडारी, 41 वर्षीय सीता भंडारी, 24 वर्षीय विवेक कुमार, 34 वर्षीय तेज बहादुर तामांग, 48 वर्षीय पेम्बा तामांग, बर्ख नहीं खुलल कुशल मगर, 33 वर्षीय मीन बहादुर श्रेष्ठ, नाम नहीं खुलल कार की नाम आ नहीं बता सकबला एक गोटे, 40 वर्षीय गिरिलाल बुढ़ाथो की, 23 वर्षीय रूपक रोका, 35 वर्षीय सूजन बसनेत आ 23 वर्षीय सुशांत श्रेष्ठ रहल अछि। उधार कयल गेल घायल मध्य किछु के राष्ट्रीय ट्रामा सेंटर आ किछु के शिक्षण अस्पताल में उपचार भऽ रहल प्रहरी जनौलक अछि। प्रवक्ता थापाक अनुसार घायल मध्य अन्य थप विवरण प्राप्त होयब बाकी रहल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेतृत्वक अमेरिकी प्रशासन अप्रवासन संबंधी छानबीन कड़ा बना रहल समय विश्वभरिक अमेरिकी दूतावास तथा वाणिज्य दूतावास में भिसा अंतर्वार्ताक लेल तोकल गेल समय अस्थायी रूप में रोकल रॉयटर्स जनौलक अछि। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ई डेग भिसा अधिकारी सभक विश्वव्यापी परीक्षण आ प्रशिक्षण कार्यक्रम सँ संबंधित रहल स्पष्ट कयलक अछि। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता विश्वभरिक अमेरिकी कूटनीतिक नियोग में भिसा आवेदन मूल्यांकन संबंधी व्यापक प्रशिक्षण शुरू कयल आ अहि के समायोजन करबाक लेल भिसा सेवाक लेल तोकल जेबाक समय परिवर्तन कयल बतौलक अछि। रेडियो नेपाल सँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।

ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। रसुआ के भोटेकोशी में आज आई भीषण बाढ़ से भारी जनधन की क्षति, 95 लोगों के शव बरामद, अभी भी कई लोग लापता, नेपाल पुलिस का कथन। नेपाल चीन सीमा क्षेत्र में चट्टानों के साथ हिमस्खलन के कारण भोटेकोशी में बाढ़ आने का प्रारंभिक निष्कर्ष। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने बचाव खोज और राहत कार्यों में सभी सरकारी संयंत्रों को परिचालन करने का प्रधानमंत्री से किया आग्रह। बचाव और राहत कार्य को प्रभावी एवं समन्वयात्मक ढंग से संचालित करने के लिए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का निर्देश। और ईरान पर तत्काल सैन्य हमला न करने की अमेरिका की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। रसुआ स्थित भोटेकोशी नदी में आज सुबह आई भीषण बाढ़ के कारण आज शाम तक 95 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार बरामद शवों में 27 महिलाएं, 37 पुरुष, 6 बच्चियां, 5 बच्चे और 20 अज्ञात शव शामिल है। रसुआ में 1, नुआकोट में 11, धादिंग में 18, गोरखा में 16, चितवन में 33, तनहू में 5 और पूर्वी नवलपरासी में 11 शव बरामद किए गए हैं। बाढ़ में घायल 63 लोगों का उद्धार कर विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराया जा रहा है। इनमें काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में 21, राष्ट्रीय ट्रॉमा सेंटर में 7, रसुआ अस्पताल में 21, त्रिशूली अस्पताल में 16 तथा अन्य अस्पतालों में भी घायलों का उपचार जारी है। नेपाल पुलिस के अनुसार बाढ़ के कारण अभी भी बड़ी संख्या में लोग संपर्कविहीन हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने रसुआ के भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित तटीय क्षेत्र के नागरिकों की खोज, बचाव और राहत कार्य में राज्य के सभी तंत्रों को परिचालन करने का प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से आग्रह किया है। राष्ट्रपति पौडेल ने आज शाम प्रधानमंत्री शाह से फोन पर बातचीत कर रसुआ में बाढ़ व भूस्खलन से हुई जनधन की क्षति की जानकारी ली। उन्होंने पीड़ित नागरिकों के बचाव, राहत और खोज कार्य को तेज करने के लिए

राहत कार्य तेज करने की अपील की थी। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता घायलों की जान बचाना, लापता लोगों की तलाश करना और बाढ़ प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर रखना है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि सरकार का पूरा ध्यान बचाव, खोज और राहत कार्यों पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री शाह के अनुसार बाढ़ में अब तक 95 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि और शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने बताया कि नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस और नेपाल पुलिस की टीमें तत्काल बचाव कार्य में जुटी हैं। घायलों के निःशुल्क उपचार के लिए काठमांडू के वीर अस्पताल और राष्ट्रीय ट्रामा सेंटर में 100 बेड आरक्षित किए गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल टीमें और आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री भेजी गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नुआकोट, रसुआ, धादिंग और गोरखा के कई क्षेत्र बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। प्रभावित परिवारों तक भोजन, पीने का पानी, दवाइयां और अस्थायी आवास तत्काल पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रात भर की खोज और बचाव अभियान जारी रहेगा। क्षतिग्रस्त सड़क, पुल, बिजली और पेयजल संरचनाओं का प्राथमिकता के आधार पर पुनः निर्माण किया जाएगा तथा विस्थापित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पुनर्स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री शाह ने आम नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं, उद्योगियों, व्यवसायियों और स्वयं सेवकों से राहत तथा बचाव अभियान में सहयोग करने की अपील की है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया है कि नेपाल चीन सीमा क्षेत्र में चट्टानों के साथ हिमस्खलन होने के कारण लेहंदेखोला में मलबे के साथ बाढ़ आई। ये प्राधिकरण का प्रारंभिक निष्कर्ष है। प्राधिकरण के कार्यकारी प्रमुख डॉक्टर धर्मराज उप्रेती के अनुसार सैटेलाइट तस्वीरों के प्रारंभिक विश्लेषण से पता चला है कि रसुआगढ़ी नाका से करीब 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व नेपाल चीन सीमा क्षेत्र में चट्टानों के साथ हिमस्खलन हुआ। इसके कारण लेहंदेखोला में मलबे सहित बाढ़ आई, जो टिमुरे होते हुए त्रिशूली नदी में मिल गई। सरकार ने बाढ़ के कारण बेघर हुए पीड़ितों के लिए धादिंग और नुआकोट में अस्थायी आवास बनाए हैं। जिला प्रशासन कार्यालय नुआकोट और धादिंग ने विभिन्न 16 स्थानों पर अस्थायी आवास तैयार किए हैं। नुआकोट में 1500 लोगों और धादिंग में 1200 लोगों के रहने की क्षमता वाले अस्थायी आवास बनाए गए हैं। इसी तरह अन्य बाढ़ प्रभावित जिलों में भी अस्थायी आवास निर्माण का काम जारी है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भोटेकोशी बाढ़ प्रभावितों के बचाव और राहत कार्य को प्रभावी एवं समन्वयात्मक ढंग से संचालित करने के लिए संबंधित निकायों को निर्देश किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबंधन परिषद की बैठक में उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों, क्षति और जारी बचाव एवं राहत प्रयासों की जानकारी लेते हुए अभियान में तेजी लाने का निर्देश किया। बैठक ने उपलब्ध सभी संसाधनों को मोबिलाइज्ड कर बचाव और राहत कार्य तेज करने तथा तत्काल 8 हेलीकॉप्टर परिचालित करने का निर्णय किया था। घायलों के उपचार के लिए त्रिशूली स्थित सिविल अस्पताल को आवश्यक उपकरणों से व्यवस्थित करने और धुंचे, त्रिशूली सहित विभिन्न स्थानों के हेलीपैड तत्काल उपयोग करने का निर्णय भी किया गया है। आज ही प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुआ के भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ से उत्पन्न स्थिति को लेकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के संघीय सांसदों के साथ परामर्श किया। प्रधानमंत्री कार्यालय में रसुआ, नुआकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के संघीय सांसदों के साथ बाढ़ से हुए नुकसान, नदी किनारे की बस्तियों की स्थिति तथा बचाव और राहत कार्यों पर चर्चा हुई। सांसदों ने बाढ़ से हुए प्रभाव और बचाव एवं राहत के लिए आवश्यक कदमों को लेकर प्रधानमंत्री शाह का ध्यान आकर्षित कराया था। सरकार ने रसुआ के सीमावर्ती क्षेत्र रसुआगढ़ी और भोटेकोशी नदी के निचले तटीय क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए तत्काल बचाव, उपचार और राहत कार्य को प्राथमिकता देने का निर्णय किया है। मंत्रिपरिषद की आज हुई आपात बैठक ने घायलों के निःशुल्क उपचार, अवरुद्ध सड़कों को जल्द से जल्द खोलने तथा दूर संचार और बिजली सेवाओं को शीघ्र बहाल करने के निर्देश दिए हैं। क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाओं और भौतिक बुनियादी ढांचे के
तत्काल पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने का निर्णय भी किया गया है। सरकार ने बाढ़ में मृतकों के परिवारों को कानून के अनुसार आर्थिक सहायता देने तथा प्रभावित जिलों के स्थानीय तह को 3 महीने के लिए आपदा संकट ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का निर्णय किया है। चीन और भारत ने भी बचाव एवं राहत कार्य में

0: सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि रसुआ के भोटेकोशी में आई बाढ़ में विभिन्न सुरक्षा निकायों के 79 सुरक्षा कर्मियों समेत कई सरकारी कर्मचारी और स्थानीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 9 शव बरामद किए गए हैं। लापता सुरक्षा कर्मियों में 26 नेपाल पुलिस, 44 नेपाली सेना और 9 सशस्त्र पुलिस के जवान शामिल है। बाढ़ से त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्र की सड़क, पुल, जलविद्युत और संचार संरचनाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आज सुबह नेपाल चीन सीमा क्षेत्र में भूकंप के बाद हिमस्खलन होने से भोटेकोशी नदी में भीषण बाढ़ आई। मंत्री खनाल ने बताया कि बचाव और राहत के लिए 13 हेलीकॉप्टर परिचालन किए गए हैं। घायलों के उपचार के लिए नुआकोट जिला अस्पताल में अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मी तैनात किए गए हैं। गंभीर घायलों के उपचार के लिए बीर अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर और त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल समेत 5 अस्पतालों को तैयार रखा गया है। बैठक में सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने लापता लोगों की खोज, बचाव और घायलों के उपचार में तेजी लाने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षण कराया। उन्होंने निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्थाओं और नागरिक समाज से भी राहत एवं बचाव कार्य में जुटने का आग्रह किया। सांसदों ने भोटेकोशी और त्रिशूली नदी किनारे के प्रभावित बस्तियों में तत्काल राहत और बचाव अभियान तेज करने तथा संभावित पुनः बाढ़ को देखते हुए चीन के साथ समन्वय कर पूर्व तैयारी करने की मांग की। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
2: सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
1: यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
2: पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
1: किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
2: ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
1: सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। सरकार ने आपातकालीन प्रबंधन के लिए बाढ़ प्रभावित जिलों के जिला आपदा प्रबंधन कोष में तत्काल रकम भेजने का निर्णय किया है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारी प्रमुख डॉक्टर धर्मराज उप्रेती के अनुसार नुआकोट और रसुआ को 1-1 करोड़ रुपए तथा धादिंग को 50 लाख रुपए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी बीच प्राधिकरण ने बचाव की प्रतीक्षा कर रहे लोगों से आग का धुआं निकलकर बचाव दल को संकेत देने का अनुरोध किया है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से खोज एवं बचाव में जुटी संस्थाओं से संबंधित जिला प्रशासन, सुरक्षा निकाय और स्थानीय तह के साथ समन्वय कर सहयोग करने की अपील की गई है। प्राधिकरण ने बाढ़ प्रभावित नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने और संभावित जोखिमों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से फोन पर बातचीत कर नेपाल में आज बाढ़ से हुई जनधन की क्षति पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस कठिन समय में भारत की जनता नेपाली जनता के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है और बचाव एवं राहत कार्यों में भारतीय टीमें नेपाल के साथ समन्वय कर रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं ने भोटेकोशी बाढ़ से उत्पन्न विषम परिस्थितियों में नागरिकों की जीवन रक्षा और बचाव कार्य को प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा के सभापति रवि लामिछाने ने पार्टी के नेता, कार्यकर्ताओं और सुवेक्षकों से प्रभावित नागरिकों की सुरक्षा और बचाव में जिम्मेदारी के साथ जुटने तथा आपदा संबंधी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करने की अपील की है। नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा ने सरकार से राज्य के सभी संयंत्रों को परिचालन कर विभिन्न तह की सरकारों के साथ समन्वय करते हुए बचाव और राहत कार्य में जुटने का आग्रह किया है। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने पार्टी कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों को स्थानीय प्रशासन के समन्वय में बचाव कार्य के लिए तैयार रहने का निर्देश किया है। वहीं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने नागरिकों से सतर्क रहने, सुरक्षित स्थानों पर रहने और प्रशासन एवं सुरक्षा निकायों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। नेपाली कांग्रेस ने रसुआ में अप्रत्याशित और अचानक आई भीषण बाढ़ से उत्पन्न गंभीर स्थिति में राहत और बचाव कार्य पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय किया है। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय सानिपा में आज हुई आपात बैठक में सभापति गगन कुमार थापा ने पार्टी के सभी कार्यक्रम स्थगित कर सभी स्तर के कार्यकर्ताओं को खुद सुरक्षित रहते हुए तत्काल बचाव और राहत कार्य में जुटने का निर्देश किया। बैठक में रसुआ से निर्वाचित सांसद मोहन आचार्य के संयोजकत्व में बाढ़ प्रभावित के लिए सहायता जुटाने तथा सरकार के साथ समन्वय कर देश भर के पार्टी सदस्यों से सहयोग जुटाने का निर्णय किया है। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ ने भोटे कोशी बाढ़ से हुए नुकसान का तत्काल आकलन कर बचाव राहत और पुनर्स्थापना कार्य में तेजी लाने का निर्देश किया है। मंत्रालय में हुई बैठक में उन्होंने आपदा प्रभावित कर्मचारियों मजदूरों और आम नागरिकों के उद्धार एवं पुनर्स्थापना को प्राथमिकता देते हुए गृह मंत्रालय सहित संबंधित निकायों के साथ समन्वय कर तत्काल संयंत्र परिचालित करने का निर्णय किया है। उन्होंने देश भर विशेषकर काठमांडू घाटी में बिजली आपूर्ति नियमित और सुरक्षित रखने के लिए वैकल्पिक एवं आपातकालीन व्यवस्था तैयार रखने का निर्देश किया है। बाढ़ से रसुआ में 8 और नुआकोट में 6 जलविद्युत परियोजनाएं प्रभावित हुए हैं। नुकसान के समग्र आकलन के लिए एक समिति भी गठित की गई है। रसुआ के भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ से हुए नुकसान के बाद प्रभावितों के बचाव और पुनर्निर्माण के लिए भारत चीन और विश्व बैंक ने आर्थिक सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। अर्थमंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले के सचिवालय के अनुसार विश्व बैंक ने आपातकालीन सहायता के तौर पर नेपाल को 25,000 रुपए तक सहयोग देने की जानकारी दी है। भारत ने बाढ़ पीड़ितों के लिए आवश्यक राहत सामग्री की सूची मांगी है, जबकि चीन ने तत्काल नकद सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई है। अर्थमंत्री वागले ने सहयोग के लिए पड़ोसी देशों और दाता निकायों के प्रति आभार व्यक्त किया है। कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी ने बाढ़ के कारण पशुओं में बीमारियां फैलने की आशंका को देखते हुए तत्काल रोकथाम और नियंत्रण के उपाय अपनाने का पशु सेवा विभाग को निर्देश किया है। मंत्री चौधरी ने विशेष रूप से रसुआ नुआकोट और धादिंग जिलों में विशेष टीमें तैनात कर पशु स्वास्थ्य की निगरानी बीमारी की पहचान रोकथाम और नियंत्रण के आवश्यक कार्य आगे बढ़ाने का निर्देश किया। उन्होंने कहा कि आपदा के समय मानव स्वास्थ्य के साथ पशु स्वास्थ्य को भी समान प्राथमिकता देते हुए संबंधित निकायों के बीच प्रभावी समन्वय के साथ तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। भोटेकोशी में आई बाढ़ से रसुआ नुआकोट और धादिंग समेत विभिन्न क्षेत्रों में हुए नुकसान के बाद संभावित जोखिम को देखते हुए जिला प्रशासन कार्यालय धादिंग ने जिले में पृथ्वी राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया है। जिला प्रशासन कार्यालय ने आज सूचना जारी कर बताया कि आज से अगले आदेश तक पृथ्वी राजमार्ग पर चलने वाले सभी सार्वजनिक और निजी वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। प्रमुख जिला अधिकारी लक्ष्मी पांडे गौतम ने बताया कि बाढ़ के कारण रसुआ और नुआकोट के अलावा धादिंग जिले में पृथ्वी राजमार्ग के विभिन्न स्थानों पर भी नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा ने भोटेकोशी बाढ़ प्रभावित नागरिकों के बचाव और राहत के लिए 50 लाख रुपए आर्थिक सहयोग देने का निर्णय किया है। रासपा सचिवालय की आज हुई बैठक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य में सहयोग के लिए पार्टी की समितियों सदस्यों और शुभचिंतकों को स्थानीय प्रशासन एवं सुरक्षा निकायों के समन्वय में रैपिड एक्शन टीम रेड के माध्यम से सक्रिय करने का निर्णय किया है। बैठक ने सरकार से लापता और जोखिम में पड़े लोगों का तत्काल बचाव करने तथा सुरक्षित आवास पेयजल दवा और खाद्यान्न की व्यवस्था करने का आग्रह किया है। साथ ही आर्थिक एवं भौतिक सहायता सरकार की एक द्वार प्रणाली के माध्यम से ही उपलब्ध कराने की अपील की गई है। रासपा ने संभावित महामारी की रोकथाम के लिए विशेषज्ञ स्वास्थ्य टीम तत्काल परिचालन करने तथा बेघर परिवारों के लिए उचित मुआवजा और दीर्घकालीन पुनर्स्थापना की ठोस योजना बनाने की भी मांग की है। नेपाल पर्यटन बोर्ड के अनुसार रसुआ के भोटेकोशी में आई बाढ़ के कारण 403 पर्यटक संपर्क विहीन हैं। बोर्ड के अनुसार इनमें 62 नेपाली और 341 विदेशी पर्यटक शामिल है। पर्यटन बोर्ड के कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकृत अधिकारी हिकमत सिंह एर ने बताया कि विभिन्न कंपनियों के माध्यम से गोसाई कुंड और कैलाश मानसरोवर गए 403 पर्यटकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। संपर्क विहीन पर्यटकों में 203 पुरुष और 200 महिलाएं हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या भारतीय पर्यटकों की है। बोर्ड ने जानकारी या सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1234, हॉटलाइन नंबर 1144 पर संपर्क करने का आग्रह किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका ने फिलहाल ईरान पर नया सैन्य हमला शुरू करने की कोई तत्काल योजना न होने का संकेत दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कई सहयोगी देशों के विदेश मंत्रियों को इस संबंध में जानकारी दी है। अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई के बजाय फिलहाल आर्थिक प्रतिबंध और समुद्री दबाव को प्राथमिकता देने का संकेत दिया है। हालांकि ईरान की ओर से अमेरिकी हितों या सुरक्षा पर हमला होने की स्थिति में सैन्य विकल्प को पूरी तरह खारिज नहीं किया गया है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष को 6 महीने हो चुके हैं और होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर तनाव जारी है। ईरान और ओमान इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को फिर से खोलने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका के रुख में ये बदलाव क्षेत्र में तत्काल सैन्य तनाव कम करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अमेरिका ने भविष्य में सैन्य कार्रवाई की संभावना पूरी तरह समाप्त नहीं की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रसुआ के भोटेकोशी में आज आई भीषण बाढ़ से भारी जनधन की क्षति, 95 लोगों के शव बरामद, अभी भी कई लोग लापता, नेपाल पुलिस का कथन। नेपाल चीन सीमा क्षेत्र में चट्टानों के साथ हिमस्खलन के कारण भोटेकोशी में बाढ़ आने का प्रारंभिक निष्कर्ष। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने बचाव खोज और राहत कार्यों में सभी सरकारी संयंत्रों को परिचालन करने का प्रधानमंत्री से किया आग्रह। बचाव और राहत कार्य को प्रभावी एवं समन्वयात्मक ढंग से संचालित करने के लिए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का निर्देश और ईरान पर तत्काल सैन्य हमला न करने की अमेरिका की घोषणा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
4: ट्राफिक लाइट को सदैव पालना गरौं, यसले तपाईलाई चोकमा हुन सक्ने दुर्घटनाबाट प्रत्येक पल्ट सुरक्षा गर्दछ।
5: नेपाल सरकार पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सडक विभाग।
6: 4G LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 MHz र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।